नमस्कार 4EBFM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है। बदलते मौसम में अपने आप का और परिवारजनों का भरपूर ख्याल रखिए। चलिए आज का कार्यक्रम इस भक्ति गीत से शुरू करते हैं। यह शंकर महादेवन का गाया गणपति गीत है।

आज के सुविचार में भी चलिए एक प्रेरक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। पुराने समय में जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, तब की एक कथा है यह। एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें छात्रों के रहने के लिए अलग अलग झोपड़ियां थी। सभी शिष्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। पढ़ाई, भोजन, आश्रम की सफाई और दूसरे कामों में सहयोग करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो हर समय साथियों के बीच रहता था और मिलजुल कर काम करता था और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने सबसे अलग रहना शुरू कर दिया और सामूहिक कार्यों में अब उसका उत्साह नहीं रहा। बाकी शिष्यों ने गुरु को इस बारे में बताया। एक शाम गुरु उस शिष्य की झोपड़ी में गए। सर्दी का मौसम था, कुछ लकड़ियां जल रही थीं और शिष्य उस आग के पास बैठा हुआ था। तब गुरु ने एक जलती लकड़ी को निकालकर उसे अलग एक जगह रख दिया। थोड़ी देर में उस जलती आग वाली लकड़ी ठंडी पड़ गई और आग बुझ गई। फिर गुरु ने उसी बुझी हुई लकड़ी को फिर बाकी लकड़ियों के साथ आग में डाला तो उसने जल्दी ही आग पकड़ी और फिर जल पड़ी। श्रोताओं, क्या आपको बात समझ आई? जब तक लकड़ी बाकी लकड़ियों के साथ थी, तब तक वह जलती रही, अकेली होते ही बुझ गई। मनुष्य भी ऐसा ही है। संगठन और सहयोग से हमें शक्ति मिलती है। अकेले रहकर हम कमजोर पड़ जाते हैं। चलिए अब यह गीत सुनते हैं, फिल्म अगर तुम न होते से।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका हार्दिक स्वागत है 4EBFM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में और मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। तो आज चलिए हम कुछ नॉस्टैल्जिक गीतों का आस्वादन करेंगे और अपने उन अतीत के दिनों की याद करेंगे जिसमें हमने इन गीतों को रिपीट पर सुना है या फिर इन गानों को महफिलों में गाया है। हो सकता है आपकी कॉलेज या स्कूल्स के दिनों की यादें ताजा हो जाएं। तो चलिए आज हम बातें करेंगे पंचम दा की। जी हाँ, मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन जी की। पंचम दा के गीत तो आज की जनरेशन भी जानती है क्योंकि कई गीतों के रीमिक्सेस आए हैं, कवर सॉन्ग्स भी आए हैं और कई गीतों को नई फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए यह नॉस्टैल्जिक गीत सुनते हैं और आज के विषय की शुरुआत करते हैं।

आशा जी को देते हैं, परंतु सभी मेलोडीज दीदी लता जी को देते हैं। यह 100% सही भी है, क्योंकि आशा जी के गाए डांस सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट रहे हैं और उनकी मादक आवाज उन गीतों में पूरी तरह जचती भी है। लता जी की सुरीली आवाज मेलोडीज में खूब जचती है। चलिए अब अगला आर डी बर्मन हिट सुनते हैं, फिल्म शक्ति से।

अगस्त सितंबर महीनों में त्योहारों की बाढ़ शुरू हो जाती है। हमारा स्वतंत्रता दिवस, गरबा नाइट्स, ओणम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, एक के बाद एक महापर्व आते जाते हैं। और भारत से बाहर कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वीकेंड्स में, तो हर वीकेंड किसी न किसी पर्व को मनाते हुए किसी न किसी एसोसिएशन के कार्यक्रम में हम सब व्यस्त हो जाते हैं। अगस्त के अंत में हमारा ओणम था, जो कि 15 अगस्त वाले वीकेंड से मनाना शुरू हो चुका है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम अभी तक 4 ओणम सेलिब्रेशंस में शरीक हो चुके हैं और 2 और आने बाकी हैं। जहां केरला में हमें ओणम के दौरान 10 दिनों का वेकेशन मिलता है और फिर ओणम वाले दिन पूरे जोर शोर से ओणम, पुक्कलम, सद्या सब होता है, वही यहां कई वीकेंड्स में होता है। चलिए एक मलयालम गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं 4EB FM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। तो हम अब विषय पर वापस आते हैं। मैं आपको पंचम दा के विषय में बता रही थी और हम उनके गीत सुन रहे थे। क्या आप जानते हैं कि आरडी बर्मन का नाम पंचम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि आरडी बर्मन जब छोटे थे और रोया करते थे तो शास्त्रीय संगीत के पांचवें सुर पा की श्रुति में रोया करते थे। इस स्वर को पंचम कहते हैं, तो उनका निकनेम पंचम पड़ गया। हमारे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले अशोक कुमार आरडी बर्मन को बचपन से देखते आए हैं। बचपन में पंचम दा पा सिलेबल को बार बार दोहराते थे, तो अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए अब अगला सुपरहिट गीत सुनते हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से।

आरडी बर्मन का पूरा नाम था राहुल देव बर्मन। उनके पिताजी थे सचिन देव बर्मन, जो कि एसडी बर्मन के नाम से प्रसिद्ध संगीतकार थे। पंचमदा ने काफी छोटी उम्र में एक गाना कंपोज किया था, जिसे पिताजी एसडी बर्मन ने फंटूश फिल्म में 1956 में इस्तेमाल किया था। सर जो तेरा चकराए वाली धुन भी पंचमदा की ही थी, जिसे एसडी बर्मन ने प्यासा फिल्म में इस्तेमाल किया। एक किस्सा ऐसा है कि 1961 में महमूद अपनी फिल्म छोटे नवाब के संगीत के लिए एसडी बर्मन जी से मिलने उनके घर गए। तब एसडी बर्मन जी को अपनी व्यस्तता की वजह से यह फिल्म ठुकरानी पड़ी। इस मीटिंग के दौरान महमूद जी की नजर तबला बजा रहे पंचमदा पर पड़ी और सीधे पंचमदा को अपनी फिल्म के संगीतकार के रूप में साइन कर लिया। चलिए अब सुनते हैं पंचमदा का एक और सुपरहिट सॉन्ग फिल्म सागर से।

1966 में पंचमदा की शादी हुई रीता पटेल से। रीता ने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी कि वह आरडी बर्मन के साथ फिल्म डेट लेकर दिखाएगी, और फिर वह फिल्म डेट आगे चलकर शादी में बदल गई। परंतु 1977 में दोनों का डिवोर्स हो गया। होटल में सेपरेशन के बाद अकेले बैठे पंचमदा ने परिचय फिल्म का फेमस गीत मुसाफिर हो यारों की धुन बनाई थी। 1980 में पंचमदा ने अपने परिवार की ना सुनते हुए आशा भोंसले जी से शादी की और फिर कई हिट गाने हमें दिए। बर्मनदा को हिंदी फिल्मी संगीत में रेवोल्यूशन लाने वाले संगीतकार के रूप में जाना जाता है। बंगाली फोक म्यूजिक उनका पसंदीदा संगीत था। राजेश खन्ना के प्रसिद्ध रोमांटिक फिल्मों में बर्मनदा ने इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूजिक को पॉपुलराइज किया। बंगाली फोक म्यूजिक के साथ डिस्को और रॉक म्यूजिक को मिलाया। वेस्टर्न, लैटिन, ओरिएंटल, अरबिक संगीत के अंश उनके संगीत में पाए जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का यह गीत, जिसमें विस्लिंग काफी फेमस हुआ था।

पंचमदा हारमोनिका बहुत बढ़िया बजाते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत भी उनकी उसी तरह से हुई थी। चुरा लिया है तुमने गीत में चम्मच द्वारा ग्लास पर मारने की ध्वनि, सोलवा सावन के गीत में माउथ ऑर्गन बजाना, हेलन के कई डांस नंबर्स में एक अलग स्टाइल में मेल वॉइस देना, ये सब पंचमदा के कारनामे थे। पूरी रात बालकनी पर बैठकर लाइव बारिश को रिकॉर्ड करके अपने संगीत में उन्होंने प्रयोग किया है। चाबियां, बॉटल्स, ग्लास, कंघी, सीटी आदि से उन्होंने काफी रचनात्मक संगीत तैयार किया है। चलिए सुनते हैं यह फेमस गीत यादों की बारात फिल्म से।

1976 में एक फिल्म आई थी महबूब, जिसमें एक बहुत ही फेमस गाना था मेरे नैना सावन भादो, जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों की आवाजों में सोलो सॉन्ग्स की तरह रिकॉर्ड किए गए थे। जब पंचम दा ने इस गीत की धुन किशोर कुमार को सुनाई तो किशोर कुमार ने इसे टफ गाना कहकर मना कर दिया। तब पंचम दा ने काफी मिन्नतें की तो किशोर कुमार इस शर्त पर राजी हुए कि पहले इसे लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। फिर लता जी का गाया गीत उन्होंने करीब एक हफ्ते तक सुना और फिर अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड किया। चलिए अब यही गीत सुनते हैं।

1995 में फिल्मफेयर अवार्ड्स ने फिल्मफेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट नामक एक अवार्ड बनाया पंचम दा की याद में। इस अवार्ड को अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट्स को दिया जाता है। आखिर में हम 1942 अ लव स्टोरी का एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। यह फिल्म पंचम दा की आखिरी फिल्मों में है जिसके संगीत के लिए उन्हें मरणोपरांत फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। आशा है आज का यह कार्यक्रम आपका मनोरंजन करने में सफल रहा होगा। सबको आने वाले सभी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं। अपना और परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराइए। अब मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार आपसे विदा लेती हूँ। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।